चौथा हर के जाना सतगुर सतपुरखा बिनौ करौ गुरपास हम कीरे करमा सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास।

काहे मन पहो करिया, उडे उड़ाया वैसे को सात, सपाचे बचरे शरिया, तिन कमन खलावे कामन चुगावे, मन में जिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जान नानक बाल बाल साध बाल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओहंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय पारा, सब त्यावहे सब त्यावहे तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा। साब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना।

तहडूबी अले मान एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार हाओ नाहाओ जति सती नहीं।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बाध कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी अस्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पाट पाट की जान। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजात हरत तब देह पारा। जमिया करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आपे अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार नृभ का निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेदा, जाकू पेव न पावत बेदा।

पई को कह चाओ पई। संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस फुण तीन के हिज भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आफ जून दोहरा।

चाओ पई। मैं ना गणेश सहे प्रथम मनाऊं, किसन बेसन कब हूं नह त्याऊं। कान सुने पहचान ना तिन सो, लिव लागी मोरी पाग इन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की लाज विचार। अपना जान मुझा प्रत परिय, चुन चुन सत्र हमारे मरिय। देख तेग जग मैं दो चलै, राख आप मोहे और ना दलै। तुम मम करहो सदा प्रत पारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमारे सब काज।

बैरियन संगारु प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए काब ले सुधारो कब्यो बाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हाँ जाग माहे जो तेह प्रभ को त्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उबजत रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा

सो पावै। सदा सहपत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाहीं कहर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटा हो। जिस दी आए वडियाइया, कह नानक सुनोह संत हो। सब तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शबद चित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वास कीते। काल कंटक मारिया, तुहर कर्म पाया तुद जिन काओ। से नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुख होवा। तेत कर अनहद वाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो। सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल वे सूरे,

अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होय मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां

0: आप दिशा तिथे बैठो
1: जे मां पीछे त्रिखा महाना
0: ते नाल बचन करता के माता जे तुहानू किते ते लग जावे जादी लगे ना रहा जावे जे मेरे मगरों
1: लखै के होत प्राण की हाना
0: जे तुहानू महसूस होवे कि मेरा प्राण निकल जाने पानी तो बिना
1: तो इस थल मह सूको ताल
0: जेड़ा इत्थे अपने बिरछ दे नाल लागे तालाब है ना सुका होया पानी तो बिना है उस जगह ते
1: लोष्ट को उठाए तत्काल
0: उत्थे जाके ते एक मिट्टी दी टीम नू उठाना करियो
1: तह ते जल को पीवन की जय
0: जदों तुसी उस मिट्टी दी टीम नू चुकोगे उहदे विचों पानी दा सोमा निकलेगा ते उह तुसी पानी पी के प्यास दूर कर लैणी
1: प्राण बचाए अपने लीजै
0: करके अपने प्राणा नू बचा लेना जे एमरजेंसी लोड पवी
1: पुन सो लोशट तहां टिकावहो
0: फिर अपनी प्यास दूर करके प्राणा नू बचा के ते उहदी टीम जिथे चुकनी जिथे पानी दा सोमा निकलना उहनू उसे तरह टीम रख देणी उहनू लका देना है
1: चलियो ग्राम को जल हित ताए
0: इस तरह माता जी नूं कह के ते भाई भगतू जी उस नगर नूं चले जिहड़ा चार को ते हटवां जल लैण वास्ते
1: पुन सो लोशट तहां टिकावहो
0: फिर दोबारा उससे जड़ी टीम चकनी उथे टका देनी है
1: नह दूसर के निकट जनाव हो
0: ये करके होर किसे नूं ना पता लगे ये गल गुप्त रहनी चाहीदी है क्योंकि इह शक्ति है ना करामात दी दा वचन ही ते माता नूं समझाता ते अपने पीण जोगा पानी छक के प्यास बुझा के ते उह टीम नूं मिट्टी दी नूं उथे रख देनी है जो किसी ना पता लगे
1: अपन मात को इम समझाए
0: इस तरह माता ने समझा के ते भाई भगतू जी
1: चलियो ग्राम को जल हित ताए
0: फिर भाई भगतू जी उस नगर नु चले जेड़ा चार को ते पानी लैण वास्ते
1: जब भगतू कर बेग पधारा
0: जदों भाई भगतू जी चले गए हन उस नगर नू
1: भाई त्रिखा तुर खेद मजारा
0: मगरों माता जेड़ी है उन्हों इन्नी प्यास ना व्याकुल हुई है
1: रहियो गयो नह चल तिस थान
0: माता कोलो हुण प्यास जरी नहीं जा रही इन्नी प्यास भारी लगी हुई है
1: एक उखारियो लुष्ट महान
0: फिर माता ने जिस तरह भाई भगत जी कह गए हम जे तेरा प्यास तो ना सरे तेरे प्राण जांदे दिसण तो तुसी इसों जाके इक टीम चुके जल कढ़ लेना पी लेना हुण माता भगतू जी दी माता जी उत्थे उस थां ते गई जिथे उन्होंने इशारा किया है
1: सवैया टीम उखार कै बार पिखियो
0: फिर इन्हें इहदी माता ने उत्थों जाके जिहनूं टीम नूं खेड़िया है
1: बिन मैल के सीतल है समुदाई
0: उत्थों फिर सोमा पानी दा निकलिया बड़ा सुंदर ठंडा ते साफ पानी निकलिया है
1: होए गई सो प्रसन्न तबै
0: माता जल देख के बड़ी प्रसन्न हुई है क्योंकि आसे पासे कते बूंद पानी दी नहीं है ते टीम पुट्टिया पानी दा सोमा निकलिया वह भी साफ सुंदर सोहना ठंडा ते माता देख के जल नूं बड़ी प्रसन्न हुई बड़ी खुश हुई है
1: निज हाथ में लाए पियो जल माई
0: फिर माता जी ने अपने बुक दे नाल

इस तरह बादशाह का दिल पिघलिया, उन्हें परवाना जारी कर दिता कि मां जे तेरा पुत्र कह दे कि मैं सिख नहीं हिंदू हाँ उसकी जान बख्शी जा सकती। मां ने काली नाल गाह होके परवाना बादशाह के हाथ चो फड़ लिया, दौड़ी हुई उत्थे गई गांधी ग्राउंड के अंदर जिथे कतलेआम हो रहा सी, जिथे एक एक सिख नू पुछ के मारिया जा रहा सी कि मुसलमान होना प्रवान कर लै। ये मां उत्थे पहुंच गई, उधरों जलाद तेग तिखी कर रहा है, उधरों इस मां के पुत्र की वारी है, कतलगाह के अंदर खड़ा है। दौड़ी हुई मां गई फरक्शियर बादशाह नू दूरों आवाज मार के कहिंदी, वे जालम बादशाह दे करिंदिया मेरी दुनिया ना जाड़ दई, वेखी किते मैं अपने पुत्र की रिहाई का फरमान लैके आई। इन्हें काली नाल जाके उस सरबरा खान कोतवाल नू फरमान फड़ा दिता, परवाना फड़ा दिता, भज के जाके अपने पुत्र नू जफ्फी पा लई, इहदी ममता करलाई, उहदा मत्था चुमिया, कहण लगी पुत्र तू उदों बिल्कुल छोटा जिहा सां, मैं लोकां दे न्याणे खड़ा खड़ा तेनू पालिया, तू रोंदा रहिंदा सां, मैं लोकां दे बच्चे खड़ाउंदी रही, मैं लोकां दा गोहा कूड़ा कीता, बड़ी मुश्किल दे नाल तैनू मैं पालिया पुत्रा, जदों लोक कहिंदे सन इहदा पति नहीं इह विधवा इह रंडी जनानी है, मैं उस वेले लोकां दीआं गल्लां वी सुणियां ते दुनिया दे लोकां नू इह गल आखी, उह जाणे मेरे सिर ते पति दा छाया नहीं रहा पर उहदी निशानी उहदा पुत्र ते मेरे कोल है ना। मैं लोकां दे ताने मेणे सुण के बड़े मुश्किल दे नाल पुत्रा तैनू जवान कीता है, मेरे कर्मां च रब ने पता नहीं इन्नियां खुआरियां क्यों लिखियां ने, हुण तू भी इस दुखां दे खूह विच धक्का दे के पुत्रा किते चलदा ना बणी, मेरी दुनिया उजड़ जावेगी। मां ने बड़ा यतन कीता, पुत्र ये गल्लां सुणदा रहा, सच है गुरु प्यारिओ मां दा दिल है, पुत्र आउंदा है उहदा चेहरा वेख के उहदे कालजे नूं ठंड पैंदी, उह जांदा है ते जांदे होए दी कंड वेखदी है, उह परदेसां च जांदा है, सौ सौ अरदासां करदी है उहदी चढ़दी कला दीआं, ओ आउंदा है ते सौ सौ सुखना सुख दीए, परमात्मा मेरे बच्चे नू तत्ती वाह ना लगे। मां दा दिल है, मां मत्था चुमिया, उन्हें सोचिया मेरे तरलियां दा ज्यादा नौजवान ते असर नहीं हो रहा, इहदे चेहरे दा जलाल दस रहा है, इहदे अखां दी लाली दस रही है कि दुनिया नालों मोह तोड़ के गुरु कलगीधर पातशाह दी गोद विच जाना चाहुंदा है। उन्हें सज व्याई नौ नू अगाह कीता, कहण लगी हो सकदी मेरी ममता बुढ़ी हो गई है, सच है गुरु प्यारिओ ज्यों ज्यों बंदा उम्र च वड्डा हुंदा है ते मां प्यो दा औलाद प्रति मोह वधदा जांदा है, औलाद दा मां प्यो प्रति मोह घटदा जांदा है, कुदरत दा यूनीवर्सल असूल है। जदों बच्चे अपनियां खंभां ते उडारियां मारन लग पैंदे ने उहनां दे अंदर ओह मां प्यो दी खिच नहीं रहिंदी, पर मां प्यो ज्यों ज्यों बजुर्ग हुंदे ने उहनां दी ममता बच्चियां दे प्रति होर तिखी ते तेज हुंदी। उहने सोचिआ जे मेरी गल का ज्यादा असर नहीं जापदा, उन्हें अपनी नौजवान नौ नू गाह कीता, अजे वह शर्म दे भार थले दबी हुई, उन्हें मेहदी रंगे हाथ सामने करके आख्या, मेरी शगना दी मेहदी ना खून बनावी, मेरी भरी जवानी ना खाक मलावी, मेरे कोमल दिल नू हाए तीर ना मारी, सौ जुड़ी विच लगियां किते तोड़ ना जावी। उस शर्म थले दबी हुई उहदी घरवाली ने एक तरला मारिया, अगों नौजवान बोलिया, जे ते आम व्यक्ति हुंदा सिक्खी विच पूरा ना हुंदा ते उहनूं डलाउण वास्ते इन्ना ही काफी सी, पर गुरु कलगीधर पातशाह दो सिख उहने खंडे बाटे दा अमर छकिया होया, कहिंदा प्रिया तेरा सजणी जिवें तैनू प्यारा, तिवें मेरा प्रीतम प्रभ प्राण अधारा, कच बदले हीरा तूं तजदा कोई तकिया, ए फानी रिश्ता ओ नित दा सहारा, तू ते अजे कल मेरे लड़ लगी है, मैनू अपना पति परमेश्वर मनदी है, मैं ते जदों खंडे बाटे दा अमर छकिया उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू अपना परमेश्वर मन लिया, मैं अपना परमेश्वर तेरे करके किवें त्याग सकना है। उस वेले उस नौजवान ने सरबरा खान कोतवाल नू आखिया, ये बिल्कुल सिचुएशन रलदी मिलदी है, भगत नामदेव की मां ही जदों फिरोज तुगलक उहनू सजा देण लगा ते भगत नामदेव ने यह वचन किया, रुदन करे नामे की माए, धन गुरु ग्रंथ साहिब
छोड़ राम के ना भजे खुदाए कहिंदी छड़ दे राम खुदा कह ला जा नहीं बिटाउणी है ते अगो भगत नाम दे पता की आंदा ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े ता हर गुण गाए करे गजिंद सुंड की चोट नम उभरे हर की ओट इतिहास अपने आप नू दोहराउंदा है इधर नौजवान खड़ा है सरबरा खान कोतवाल नू कहिंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा खालसा हाँ मेरी मां मैनू हिंदू दस रही है मेरी जान बचाउण वास्ते झूठ बोलदी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जदों ये गल कही सरबरा खान कोतवाल ने इशारा किया जलाद पहला ही तेग तिखी करके तैयार बर तैयार खड़ा है ओ नौजवान कहिंदा देरी ना लाओ मेरे साथी दूर चले गए ने मैनू इंज लग रहा सी जिवें गुरु कलगीधर पातशाह एक लाशां दा समुंदर तर रहा है पारले पासे बाहां फैलाई मैनू अपनी गोद विच लैण वास्ते तैयार सी इन्हां दीआं गल्लां दे नाल मेरे साथी दूर निकल गए मैं गुरु कलगीधर पातशाह जी गोद विच जाणा देरी ना करो खट करके तेग चली ओह नौजवान दा सिर तड़ नालों जुदा होया नौ ते सत कूंज वांग कर लाउंदियां होईयां पंजाब नूं तुरियां इह वाकिया पता कौन लिखदा है मौके दा गवाह खाफी खां मुतखब्बल लबाब दा करता मुसलमान बंदा है ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਖਾਫੀ ਖਾਨ ਮੁਤਖਬਲ ਲਬਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ ਇਹ 700 ਦਾ 700 ਸੂਰਮਾ ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਗਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ ਆਓ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ

अनक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमहे जुगाद गुर ए नमहे सतगुर ए नमहे श्री गुरुदेव ए नमहे अष्टपदी सिमरम सिमर सिमर सुख पावो
2: कल क्लेश तन माहे मिटावो
1: सिमरम जास विषम पर एक
2: नाम जपतया गणते अनेक
1: वेद पुराण सिमरत सुधाखिर
2: इने राम नाम एक अखिर
1: किनका एक जिस जी बसावे
2: काकी महिमा गनी न आवे
1: कांकी एक है दर्श तुहारो
2: नानक उन संग मोहे उधारो
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम
2: भक्त जना के मन विश्राम रहाउ
1: प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे
2: प्रभ के सिमरन दुख जम न से
1: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
2: प्रभ के सिमरन दुश्मन
1: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे
2: प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापे
2: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापे
1: प्रभ का सिमरन साध कै संग
2: सर्व निधान नानक हर रंग
1: प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध
2: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
1: प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा
2: प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी
2: प्रभ कै सिमरन दरगह मानी
1: प्रभ कै सिमरन होए सो भला
2: प्रभ कै सिमरन सफल फला
1: से सिमरन जिन आप सिमराए
2: नानक ताकै लागो पाए
1: प्रभ का सिमरन सब से ऊंचा
2: रब कै सिमरन उतरे मूचा
1: रब कै सिमरन तृष्णा बुझे
2: रब कै सिमरन सब कुछ सूझे
1: रब कै सिमरन ना ही जम त्रासा
2: रब कै सिमरन पूर्ण आसा
1: रब कै सिमरन मन की मल जाए
2: अमृत नामृत माहे समाए
1: रब जी बसे साध की रसना
2: नानक जन का दर्शन दसना
1: रब को सिमर से धन बनते
2: रब को सिमर से पत बनते
1: रब को सिमर से जन प्रवान
2: रब को सिमर से पुरख प्रधान
1: रब को सिमर से बेमोहताजे
2: रब को सिमर से सर्व के राजे
1: रब को सिमर से सुखवासी
2: रब को सिमर सदा बनासी
1: सिमरन तेला के जन आप दयाला
2: नानक जन की मंगैर वाला
1: रब को सिमर से पर उपकारी
2: रब को सिमर तिन सदवर हारी
1: रब को सिमर से मुख सुहावे
2: रब को सिमर तिन सुख बहावे
1: रब को सिमर तिन आत्म जीता
2: रब को सिमर तिन निर्मल रीता
1: रब को सिमर तिन अंध कनेरे
2: रब को सिमर बसे हर नेरे
1: संत कृपा ते अंदिन जाग
2: नानक सिमरन पूरे भाग
1: रब कै सिमरन कार्य पूरे
2: रब कै सिमरन कब हुन चूरे
1: रब कै सिमरन हर गुण बानी
2: रब कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निर्जल आसन
2: प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन
1: प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार
2: सुप्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरन से जन जिनको ब्रह्मया
2: नानक तिन जन सरनी पया
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
2: हर सिमरन लग वेद उपाए
1: हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते
2: हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते
1: हर सिमरन धारी सब धरना
2: सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन कियो सकल अकारा
2: हर सिमरन मैं आप निरंकारा
1: हर कृपा जिस आप बुझाया
2: नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक
1: दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ
2: शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी
1: जय मात पिता सुत मीत न भाई
2: मन उहा नाम तेरा संग सहाई
1: जय महा ध्यान दूत जम दलै
2: जय केवल नाम संग तेरा चल
1: जय मुश्किल होवे अत भारी
2: हर को नाम खन माहे उधारी
1: अनक पुनः चरण करत नहीं तर
2: हर को नाम कोट पाप पर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
2: नानक पावो सुख कनेरे
1: सकल सृष्ट को राजा दुखिया
2: हर का नाम जपत होए सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै
2: हर का नाम जपत निस्तर
1: अनक माया रंग तिख न बुझावे
2: नाम जब त्यागावे
1: ये मार्ग ये जात अकेला
2: तै हर नाम सक होत सुहेला
1: ऐसा नाम मन सदा त्याई है
2: नानक गुरमुख परम गत पाई है
1: छूटत नहीं कोट लख बाही
2: नाम जपत तै पार पराही
1: अनक बिघन जह आए संघार है
2: हर का नाम तत्काल उधार है
1: अनक जोन जन्म मर जाम
2: नाम जपत पावे विश्राम
1: हो मैं रामल कब हूं न सोवे
2: हर का नाम कोट पाप खोवे
1: ऐसा नाम जपो मन रंग
2: नानक पाई है साध के संग
1: ये मार्ग के गन जाहे न पोसा
2: हर का नाम हां संग तोसा
1: ये पैंडे अंत गुबारा
2: हर का नाम संग उजियारा
1: जहां पंथ तेरा को ना समझानू
2: हर का नाम तह नाल पछानू
1: जय महा भयान तप्त बहु काम
2: जय हर के नाम की तुम ऊपर शाम
1: जहां त्रिखा मन तुझ आकर्ष है
2: जय नानक हर हर अमृत बरख है
1: भक्त जना की बर्तन नाम
2: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
2: हर के नाम उदरे जन कोट
1: हर दस करत संत दिन रात
2: हर हर औखद साध कमात
1: हर जन कह हर नाम निधान
2: और ब्रह्म जन कीनो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक
2: नानक जन ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਭਵਿਕੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ
2: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ
2: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੇ ਨ ਭੰਗ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
2: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ
2: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ
1: ਜਨ ਰਾਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ
2: ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ
1: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ
2: ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ
1: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ
2: ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ
1: ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ
2: ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ
1: ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ
2: ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ
1: ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ
2: ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਥੇ ਤਰੇ
1: ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ
2: ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ
1: ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ
2: ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ
1: ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਰਿਤ ਵਸੈ
2: ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ
2: ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ
1: ਨਾਮ ਤੋਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ
2: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋ ਇਸ ਲੋਕ
1: ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ
2: ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ
2: ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ
1: ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ
2: ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਦੇ ਫਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ
2: ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੁਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
1: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੁਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ
2: ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ
1: ਮਹੀ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ
2: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇਕ ਵਾਰ
1: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ
2: ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਹੀ ਹੁਮਤ ਪੁਰਾਨ
2: ਕਨਕ ਹਸਬ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਦਾਨ
1: ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਆਸਨ
2: ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮੈ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ
2: ਤੋਵੀ ਹਮੈ ਮੈਲ ਨ ਜਾਵੈ
1: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮ ਸਰਕਸ਼ ਨਾਹੀ
2: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੀ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ
2: ਗਰਬ ਘੁਮਾਨ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
1: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਰ ਰਾਤ
2: ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਦੇ ਜਾਤ
1: ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਬਹੁ ਸਾਧ ਨ ਕਰੈ
2: ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ
1: ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ
2: ਸਤਿ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ
2: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
1: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ
2: ਨਾਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ
2: ਓਟੋ ਪਾਵਦਰ ਗੈਨੇ ਸਿਜੈ
1: ਸੁਤ ਸੁਨਾਹੀ ਊਪ ਪਿਆਲ
2: ਲੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ
2: ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ
2: ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ
2: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ
2: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ
2: ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਉਮੈ ਸ਼ੋਰੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ
2: ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੈ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ
2: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
1: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
2: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕਾ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ
1: ਆਪ ਸੁਖੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ
2: ਸੋ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
1: ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ
2: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ
2: ਦੇਖਿਆ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
1: ਸੋਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ
2: ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕੋਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇ ਰੋ ਨਾਉ
2: ਨਿਥਾਵੈ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
1: ਨਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ
2: ਸਗਲ ਘਟਾਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ
2: ਸਗਲ ਘਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
1: ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ
2: ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ
2: ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ
1: ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ
2: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ
2: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
1: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ
2: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ
2: ਹਰ ਕੋ ਜਸਨ ਵਸਨ ਬਖਾਨੀ
1: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਉਤਮ ਥਾਨ
2: ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ
1: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ
2: ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਤਿਸ ਜੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ
2: ਕਵਨ ਮੋਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
1: ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ
2: ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ
2: ਪਰ ਜੋ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
1: ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ
2: ਮੁਖ ਪਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ
2: ਬਖਸ਼ ਲਿਖੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸ ਹੈ
2: ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹੱਸੈ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ
2: ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵ ਕਿਆ ਮੁੱਲਾ
1: ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ
2: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਤ ਬਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸ ਪਾਮ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ
2: ਇਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ
1: ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੇ
2: ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ
2: ਜਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤਨ ਕਰੇ ਗਵਾਰ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੇ
2: ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ
1: ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
2: ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ
2: ਤਸੈ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਦਾ ਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਣ ਹਾਰ
2: ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
1: ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ
2: ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮ मानै
2: जो होवन सो दूर परानै
1: छोड़ जाए तिस का श्रम करै
2: संग सहाई तिस पर हरै
1: चंदन लेप उतारै धोए
2: कर तप प्रीत भसम संग होए
1: अंध कूप में पतत बिकराल
2: नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल
1: दूत पशु की मानस जात
2: लोक पचारा करे दिन रात
1: बाहर भेख अंतर मल माया
2: शब्दनाहे कश करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
2: अंतर व्यापै लोप समान
1: अंतर अगन बाहर तन स्वाहा
2: गल पात्र कैसे तरे अथा
1: जा के अंतर बसे प्रभु आप
2: नानक तेजन सहर समार
1: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
2: कर गए लहो ओढ़ निभावे
1: कहां बुझारत बूझे डोरा
2: जिस कहिया तो समझे पूरा
1: कहां विष्णु पद गावे गुंग
2: जतन करे तो भी सुर भंग
1: कह पिंगल पर्वत पर भवन
2: नहीं होत उहा उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करे
2: नानक तुम्हारी कृपा तरे
1: संग सहाई सो आवे न चीत
2: जो बराई तासे प्रीत
1: बलवा के गृह भीतर बसे
2: अंत केल माया रंग रसे
1: ग्रेड कर्मा ने मन प्रतीत
2: काल न आवे मूड़े चीत
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह
2: झूठ पकार महा डोब त्रो
1: क्या हूँ जुगत बिहानी कई जन्म
2: नानक राख ले हो अपन कर कर्म
1: तू ठाकुर तुम पै अरदास
2: जीव बन सब तेरी रास
1: तुम मात पिता हम बारिक तेरे
2: तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत
2: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
1: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी
2: तुमते होए सो आज्ञाकारी
1: तुमरी गत में तुम ही जानी
2: नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक
1: दिन हर प्रभु छोड़ के लग आन सुहाई
2: नानक कहूं नसी जाई मेरा नाम है पत जाए अष्टपदी
1: दस बसूले पाछे पावे
2: एक बस्त कारण बिखो टकवावे
1: एक पीना दे दस पी हिरले
2: दो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से ना ही जारा
2: ताको की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लगा प्रभु मीठा
2: सर्व सुखता हूँ मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
2: सर्व सुख नानक जन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
2: नात पीत बरते अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहो शाह ले
2: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे
2: और उसका विश्वास न होवे
1: बस्ते आगे रखे
2: की आज्ञा मन है मत
1: उसके चौगुण करे निहाल
2: नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक भांत माया के हित
2: सर पर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया से रंग लावे
2: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दी सह सो चालन हार
2: लपट रहे होते अंधा धार
1: घटाउ स्यों जो लावे ने
2: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
2: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सपाया
2: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
2: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या वस्त्रा
2: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान
2: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
2: नानक जप जप जीव हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
2: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद
2: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुतावहे
2: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन पर उपकारा
2: मिथ्या पास लेत बिकारा
1: बूझे मिथ्या सब भये
2: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: मिथ्या साक्त की आरजा
2: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरसा नाम बिना तर अंध
2: मुख आवतता कह दुर्गंध
1: फिर सिमरन दिन रैन बिरसा विहाए
2: एक बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरसे सब काम
2: कृपण के निरार्थ दाम
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ
2: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
2: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत
1: जानन हार प्रभु प्रवीण
2: बाहर पीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश है आप न करे
2: आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभु आप
2: जिसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने दिन प्रभु जाता
2: नानक उन जन चरण पराता
1: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने
2: अपना किया आपे मन
1: आप ही आप करत नबेरा
2: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियान सकल ते रहत
2: सब कुछ जाने या तम की राहत
1: जिस भावे तिस लए लड़ लाए
2: शांत अनंतर रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
2: निमक निमक जपना

सौगात परमात्मा ने हर मनुख नु दिती है, हर एक नु दिती है। किस तरह परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नु वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुनदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सबनों वेखदा पै, सबनों सुनदा पै, सदा सुनदा पै। ठाकर हमरा सद बोलनता, सदा बोलदा पै और उदा बोल सारी दुनिया दे गुंजरे है। अनाहद ना मनुख भी सुनदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है पर सीमत है। मनुख भी जानदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होने की इसके अंदर भुख है और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दिती है। शायद इसे वास्ते जफर कहता है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वध परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना। पशुआं दा भविष्य अजय मनुख होना है, बनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजय बनस्पति होना है। केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना है। फरवरी का महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन। अमृत वेले मैं नितनेम ब्याह करा तो फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 बजे कि कौन फोन करता। दिल्ली तो एक नौजवान पूछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की बाई संत बाबा अतर सिंह जी की बरसी ते मैं पहुँचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर भरे ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानन वास्ते। मैं कहा उदो तो गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देना, तुसी हुणे ही पूछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस दें। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार का, सारे संसार के मनुखा का एको ही भविष्य है परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया तृप्ति नहीं मिलेगी, चंगा कारोबार मिल गया परेशानियां नहीं जानगी, बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नू उच्चा महल मकान मिल गया बेचैनी नहीं जाएगी, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदों मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा, की होया तू चोटी का धनवान होया, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी, की होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर होवे, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा, की होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, की होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया। दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी, ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील

0: लो है कि हो गए सच हो गए हुण सच ते परमात्मा तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच आपां भी सच हो गए हां। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीर राम दोहाई साच भयो अन कते न जाई मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक वह है कोई ना सके पछानी मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है राम हो जाना भगवान हो जाना परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने सारियां नूं दित्ते हुए ने सीमत ने ये असीम हो सकते ने उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए। पहले दर तक पहुंची है फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी प्रवान करनी सारिया का और मुखी सज्जणा का बार बार धन्यवाद फुल चुकदी शमा वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
3: Nam kal kale, nam sar pale, nam sar gaune, nam sar paune.

नमस्तं नम मंत्रमंत्र नम जंत्रजंत्र नम श्रेष्ठ नम तंत्रतंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी।

के नाम सुख सुख नाम सर्व रोग नाम सर्व भोग नाम सर्व जीत नाम सर्व पीत नाम सर्व ज्ञान नाम परम तानंग नाम सर्व मंत्र नाम सर्व जंत्रंग नाम सर्व दृश्य नाम सर्व कृष्ण नाम सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीव नाम बीज बीजे

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

पूरा मथे टिका तिड़ धोती का खाई हथ सुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरे हुवे प्रवान मलेस्थान लै पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

कोई एक आध मनुख बैठा होवे, कोई दो चार बैठे होन, औखे ना होना पत्थर बैठे दिखाई दे। इतनी असलियत पहले कंठ तो आई सी, मैं थल्ले की थी सी, पर हुण इतना उछाल आ गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। मैं कह बैठा पत्थर। सुल्तानपुर दे नवाब ने गुरु नानक नु कहा, सुने तुसी कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही है। सतगुरु कहण लगे, केड़ी शक दी गल, इक्को ही ने, ते चलो साडे नाल नमाज पढ़ो फिर चलो। महाराज कहण लगे, चल हुणे ही चल, ईशा दी नमाज पढ़दे आ, चल वक्त हो गया। इतनी उम्मीद नवाब नु भी नहीं सी, चल पैण चल पै। सारे सुल्तानपुर दे खबर पहुंच गई, बाबा नमाज पढ़न लई जा रहा है नवाब दी मस्जिद में, और नवाब दे नाल जा रहा है। बहुत सारियां नूं चिंता हुई, बाबे ने मजहब बदल लिया। बेबे नानकी मुस्कुराती रही, कहिंदे ने कृष्ण दी पहली भक्तनी जिसका पूरा अटल विश्वास सी वो द्रौपदी सी, जिन्हें श्रद्धा लैंदे, जिन्हें मुहम्मद साहब से सब तो पहले श्रद्धा लैंदी, वो खदीजा से उन्होंने पत्नी सी। जिसने सब तो पहले गुरु नानक से श्रद्धा लैंदी, वो बेबे नानकी सी। इतों सीखी चली खदीजा तो इस्लाम चलिया, जे किधरे उसकी पत्नी इनकार कर देंदी, इस्लाम नहीं बदलना सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया, उन्हें कबूल कर लिया, मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं तो खुदा दे लग गए। मोहम्मद साहब भी कह लगे, खदीजा तू ठीक जाने, मैं तो चुप कर गया, बिल्कुल चुप कर गया, मैनू तो हुण बोलना ही नहीं आता, पता नहीं खुदा की बोलना। गुरु नानक कहते ने, हों आको बोलना जानदा, हों कहा सब हुक्म आओ जीओ, मैनू बोलना नहीं आता, मैं नहीं बोलता, पता नहीं रब की बोल, पता नहीं परमात्मा की बोलता, जैसे मैं आवे कसम की वाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे लाड़ा। ये श्रद्धा सब तो पहले बेबे नानकी दी सी, सिखी उतों चली। खैर बाबा मस्जिद दे पहुंच गए, कतार दे खड़े हो गए, इमाम ने रुबात पढ़नी शुरू की थी, सारिया ने सजदा किया, गुरु नानक खड़े खड़े रहे। जन्म साखी दे बड़े विस्तार नाल एक गाथा लिखी और वक् वक् ढंग नाल लिखी। सुल्तानपुर दे नवाब ने अखां खोल के देख लिया कि बाबे ने सजदा नहीं किया, जो कि नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज पढ़न तो बाद समाप्ति तो बाद नवाब कहन लगा, सब गल्ला ही गल्ला ने, राम इक्को है, अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी ते नहीं पढ़ेगी। महाराज कहने लगे, साडा वायदा सी तेरे नाल नमाज पढ़नी सी, तेरे नाल मिलके घोड़े नहीं खरीदने सन, तू ते काबुल विच घोड़े पिया खरीद रहा, आपां घोड़े नहीं खरीदने, आपां ते नमाज पढ़नी सी। साडा वायदा ए सी तेरे नाल नमाज पढ़नी, तेरे नाल घोड़े नहीं खरीदने, तू घोड़े खरीदा पिया सी कि नमाज पिया पढ़दा सी। हैरान हो गया नवाब, नमाज पढ़दा घोड़े पिया खरीदा सी, कोई मंदिर दे पूजा पाठ करदे अपने घोड़े खरीददा, कोई गुरुद्वारे बैठा कथा कीर्तन सुनदे पाठ करदे अपने अपने घोड़े लोग खरीददे, कौन गुरु नाल जुड़दा, सब अपने अपने घोड़े खरीद रहे, अपनी अपनी गल्लां च उलझे हुए होंदे, अपने अपने झमेलियां विच फसे पए होंदे। कभी कदाई कोई पुरुष प्रभु की उस्तति दे जुड़े। हुण इत्थे प्रश्न पैदा होंदा, वो हाथ केड़े ने जिहड़े सेवा करदे, वो पैर केड़े ने जिहड़े चल पैंदे, वो जबान केड़ी, वो अखां केड़ियां ने। गुरु नानक ने उन्हां दा खुलासा कीता है, भय के चरण। मनुख दे अंदर समाज दा डर है, कानून दा डर है, लेकिन परमात्मा दा डर नहीं। साहिब कहिंदे टुंडा इहदे कोल हाथी कोई नहीं, परमात्मा दा ते डर ही नहीं। समाज तो डरदा है, कानून तो डरदा है, रब दा ते कोई डर ही नहीं।
परमात्मा का वाकई डर नहीं। देखो गोलक नु भी ताले लाए ना, तीन तीन चार चार लाए ना, ये मतलब चोरी देखे भी डर।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ
4: ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਤਪ ਦੀ ਦਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੇ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਚ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਟਾਂਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਟਾਂਡੇ ਦਰ ਚ ਵੀ ਗੱਡਾ ਖੱਚਰਾਂ ਘੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੂਣ ਤੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਪਰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨੌਕਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵਿਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨੂੰ 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨੀ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਕੱਚ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਾਈ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੱਕੜ ਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਤੀਰ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਨਾ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਭਾਈ ਮਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਇਕੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੋ ਸੰਯਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖ ਹੈ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਵ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰ ਵੇਦ 18 ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ चार कतेबा तुरेत जंबूर अंजील जेडे असी पढ़ने जी पछम मत दियां किताबां इहदे विच तुसी बाइबल लै लो तुसी कुरान लै लो यहूदी मत ओल्ड टैस्टामेंट न्यू टैस्टामेंट चलो इहो किताबां पूर्व ते पछम दे ग्रंथ महाराज कहिंदे वेद पुराण चारे वेद अठारह पुराण कतेब कुरान कतेबां अते कुरान जमीन आ धरती ते जमान वैसे जमान दा लफ्जी अर्थ आकाश भी है कुछ विद्वाना ने जमान दा अर्थ समा भी कीता जमाने नाल पर जमीन ते जमान शब्द दोनों टुकणगे अर्थ जमीन ते आकाश होवेगा इहदा मतलब इस धरती ते इस आकाश दे थले जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने मान लै तू सारे पढ़ी जा रहा है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान सबना ने सारियां दे सब ने देखे कोखे जमीन जबान सबान के पेख है सारियां नू चंगी तरह कोख्या हुण इत्थे भी थोड़ी जिवें बेनती करदिया मन च आवेगा भी पाठ पढ़न दी गल तां गुरबाणी भी कहिंदी हुण गुरु ग्रंथ साहिब जदों पाठ दी गल करदे आ उत्थे नाल विचार दी गल करदे आ जिथे विचार दी गल करदे आ उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब आचार दी गल करदे आ पाठ विचार और उचार महाराज ने देखो बाणी च सी मेरा ख्याल इत्थी कथा कीती सी जी ए पड़ पड़ गड्डी लदी इत्थी कीती सी जी महाराज दी आशा की वार च उत्थे महाराज जी ने सारे ग्रंथां दा जिक्र करके इन्नी पढ़ाई कर लै पर गल फिर भी उत्थे मैं पढ़ लिया पर नाल खौमे दी तय फिर जम गई मैं तां एडा वड्डा पाठी आं ते कदी पाठ नहीं कीता पड़ पड़ गड्डी लदियां पड़ पड़ भरियां साथ पड़ पड़ बेड़ी पाईयां पड़ पड़ गड्डियां खात पढ़ियां जेते बरस बरस पढ़ियां जेते मास पढ़ियां जेती आरजा पढ़ियां जेते सांस इस गल नूं गुरु गोबिंद सिंह कह रहे नानक लेख है एक गल सिमरन जे तू ग्रंथ पढ़ रहे हैं ओदी प्रैक्टिस नहीं कर रहा गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सारी धरती दे ग्रंथ तू वेख ले नानक लेख है एक गल होर खौमे झखना चाख इनू गुरु अर्जुन साहब कहिंदे आ पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो ए गल नू गुरु गोबिंद सिंह कह रहा जी असल च वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है सारे देखे हो किताब सारिया ग्रंथ कट्ठे किते खोन महाराज कहिंदे पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे पंच जना सो संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बांधे प्यारे इन बिद मिल ना जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वार है दीजे बुद्ध विवेका वेद पुराण पढ़े का क्या गुण सुनो इस बिनती नु पीर साहब वेद पढ़े पुराण पढ़े कुरान पढ़े की पर की पला होया कह लगे मैं इना कुछ चेते कर लिया वैसे शब्द किते खुल के अर्थ हुन गुरबाणी दे समझ पै जाए जेड़े आपां भी झगड़िया च पए ना हालत साडी भी हुई कहिंदे इन्ने सारे वेद चेते ने इहदी खोपड़ी च इन्ना कुछ चेता कहन लगे तेरे ग्रंथा दा ज्ञान इस तरह जिवें खोते दी पिठ उत्ते किसे ने चंदन ला दिता होवे सुनो चंदन कीमती है खोते कोल समर्था है भार चुकण दी पर उहनू इन्नी बेसमझ नू समझ कोई नहीं जिहड़ा मेरे पिठ ते वे कीमती किन्ना कुक है कई वारी धर्म दे ग्रंथ दे शब्द कंठ हो जांदे ने गुरमुखो ओदी कीमत दी सार नहीं पता हुंदा वेद पुराण पढ़े क्या का गुण खर चंदन जस पारा राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतर सपारा वेदा में नाम उत्तम सो सुना नाही फिर ज्यों बेतालिया नाम नु तां सुनिया नहीं बस तुकां कड कड के लड़ना शुरू कर दिता महाराज भाई साहब ने कहा वेद कते भुलाए कै मोहे लालच दुनी शैताने सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने उस कॉन्सेप्ट च गल कही गई वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान का पिक है हर चीज देखिए पर महाराज अगे बचन कर रहा पौन आहार पौन अहवा जी आहार दर था आप सारे जाने खुराक भोजन कई ऐसे ने जेड़े सूक्ष्म हो जाते ने रोटी नहीं खाते वह पौन नू आहार बनाते महाराज कहते मैं ये भी देखे जी पौन आहारी जती जत तार जेडे जमांदरू बाल जती जिन्हां ने यत नूं धारण कीता उन्होंने ग्रिस्त नूं अपनाया ही नहीं। महाराज कहिंदे ने पौन आहार जती जत तार सबै सो विचार सबै दर ते सारे। कईयां ने पाठ कट्ठा कीता सो विचार, जे थोड़ा जिहा वेख लीए चंगे विचार वाले बंदे जेड़े चंगे ख्याल देने वाले सन समाज। महाराज कहते ने पौन आहार हवा नूं भखण वाले जत नूं धारण करन वाले सबै सो विचार हजारक हजारक हजारां कु एक नहीं हजारां पौन आहारी देखे हजारां जती देखे हजारां जेड़े ने अपने आप नूं ब्रह्मचारी कहण वाले देखे सबै सो विचार हजार कै देखे हजारां देखे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसीं इह तिन तुकां च तिन पंगतियां च ये बख्शिश कीती पर आखर तीर्थां दा इशनान भी तां कर्म बड़ा कठिन है ना। दया करनी दम रखना दमन करना संयम रखना करन बड़े औखे ने। सच्चे पातशाह किताबां पढ़नियां ग्रंथ पढ़ने बड़ी एनर्जी लगती। तुसीं इह भी कह दिता पौन हारी कोई साधना है तां पौन दा हार कीता बड़ी कमाई होवे तां ही बंदा जीव दे चस्के ते रोटी ते काबू पाए। महाराज जिन्हां ने ग्रिस्त भी नहीं धारण कीता अपने आप नूं रोक के रखिया पौन आहार जती जत तार सबै सो विचार हजार कै देख हजारां महाराज कहिंदे मैं देखे जी। सतगुरु फिर कहना की चाहते हो? महाराज कहिंदे बस इको गल कहनी चाहना श्री भगवान भजे बिन भूपत। दान कर रहा पर सिमरन नहीं कर रहा विखावे दा तीर्थ नहा रहा पर अंदर दी मैल नहीं धो रहा बार मुखी इंद्रियां दा दमन करदा पिया पर फुरने ते काबू कोई नहीं मनवा काबू च नहीं। महाराज कहने बार मुखी पाठ करदा पाठ जबान कर दी मन पता नहीं की पड़ी जांदा। देखो इस गल नूं सुनो गुरु साहब जी की ए खंडन दी गल थोड़ा जी ए तां महाराज सुमार्ग पांदे पए सही रस्ता दस रहे। सतगुरु कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत श्री भगवान परमात्मा वाहिगुरु जी सब दा श्रोमणी माया दा भी पति इत्थे भूपत दा अर्थ दास ने वाहिगुरु मालक कीता क्योंकि इहदे विच राजसाज दा जिक्र नहीं इह तां सारा कर्म कांडियां उहनां दा जिक्र है जिहड़े कठिन तप कर रहे। गुरु साहिब कहिंदे ने श्री भगवान भजे बिन भूपत उस मालक वाहिगुरु दे सिमरन तो बिना ओदे भजन तो बिना महाराज कहिंदे ने एक रती बिन एक विच रत्ते तो बिना रत्ती नहीं सिमरन रत्ते जाना एक रती बिन एक सिमरन विच रंगण तो बिना एक ना लेख है एक ना लेख है। महाराज कहिंदे जेड़े मैं उत्ते गिण के आया कि तीर्थ नान दया दमदान एक ना लेख है सो संयम नेम अनेक विशेख है एक ना लेख है। इस तरह अर्थ होणगे इन्हां विचों एक भी लेखे च नहीं वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान कपेख है एक ना लेख है सिमरन तो बिना एक भी लेखे च नहीं। पौन आहार जते जते जतार सब ऐसो विचार हजार का देख है पर एक ना लेख है। इस तरह अर्थ सारे सवैये दे होणगे इन्हां विचों एक सिमरन तो बिना बंदगी तो बिना नाम तो बिना कुछ लेखे च की पएगा तेरे। हजूर सच्चे पातशाह इहदे सारे सवैये दा दाता जी दा निचोड़ इह वे जी बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे भगत नामदेव जी गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द बनारस विच उल्ट के तप करे ते उत्थे मर भी जाए बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे जौंदा अग भी साड़दा धूनिया च बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प की जय कल्प चिरजीवी रखने लई दवाइयां खानियां जड़ियां बूटियां जोग मत वालियां काया कल्प की जय असमेद जग की जय आजे इस सवैये दे अर्थ ओ जग करे जिदे विच घोड़ियां दी बलि दित्ती जांदी असमेद जग असमेद जग की जय सोना गर्भदान की जय सोना फरूट विच रख के जिवें पेठा नहीं हुंदा चीर के विच सोना भर दिता उत्तो बंद कर दिता किसी नूं पता ना लगे। गुरु ग्रंथ साहिब दुआई देख के कहिंदे ने लोको समझो इस गल नूं बनारसी तीर तप करे उल्ट तीर्थ मरे अगन दह काया कल्प कीजे अस मेद जा कीजे सोना गर्भ दान दीजे राम नाम सर तौ न पूजे। श्री भगवान भजे बिन पूपत राम नाम सर तौ न पूजे छोड़ छोड़ रे पखंडी मन कपट न कीजे खरका नाम नित नित दीजे। गंगा जो गोदावर जाइए कुंभ जो केदारा नाइए गोमती साहस गौ दान कीजे हजारा गावां दा दान कर दे तू गोमती दे कंडे ए भी नदी। महाराज कहिंदे आत्म जो नरमाइल कीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तौ न पूजे। अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान ऐसो दान नितो नित कीजे घोड़ियां दा दान कर गवां दा दान कर इस्त्री दा दान कर। पर सच्चे पातशाह कहिंदे सिमरन दे तुल कुछ भी नहीं।
5: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
6: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुन वास्ते सुनते रहो रेडियो 1550 AM। संत मस्कीन जी भाई पिंदरपाल जी भाई ठाकुर सिंह अते कई होर ज्ञानी ते महाकवियां दियां कथावां सुनन वास्ते ट्यून इन करो 1550 AM रेडियो स्टेशन।
7: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: डीमैक्स से टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हैं।
1: मार्केट दी पूरी समझ अते तो हटे पर उसे ते पूरे उतरण के गुरदयाल सिंह बाद।
0: तो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
1: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

0: सहज बलबीर बरम सुख सागर गरत परत गहल हो अंगुरिया सर्वन सुरते नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत इंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समई अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने ने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे से डिगेगा लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया है प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही वाट लखा को दी है चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए थी। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरिया दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है मम्मा अखर पहले निकलता है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कटवादी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां। और जब जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे बोल मैं सुन सका मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका मेरी जबान नु अजे बोलन दी जाच नहीं आई, तेरे रस्ते ते मैं चल सका वो पैर में कितों लिया, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चलदे ने, बाजार दे मार्ग ते चलदे ने, संसार दे मार्ग ते चलदे ने, कदी कदाई कोई कदम जो परमार्थ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहंदे मेरे कोल वो हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा, हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसी दे हत्थे च मना लेना है, किसी दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसी दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थे च पड़ोसियां दा, कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मे बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है, सफल हो गए हथ तेरा पल्ला मेरे हथ च आ गया, महान हो गए ने हथ तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिसनु उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां किसी दी अखां दे च धन है, टपक रहा लोभ, किसी दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसी दी अखां दे च उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां दे च तियां पुत्तर ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है ए लाल अखां ही दस रही ने, अखां दे च कोई दुश्मन बैठ गया है और दुश्मन ने अखां लाल कर दितियां, अखां लाल नहीं होईयां दुश्मन ने लाल कर दितियां, दुश्मन ने अपना रंग अधपत दित्ता है। कदी कदाई ओ अखां जिन्हां दे च परमात्मा हुंदा है, और जद परमात्मा अखां च बैठता है उन्हां नेत्रां तो कोई नेत्र खूबसूरत नहीं आउंदे, वो ऐसी खूबसूरत अख जिहदे च प्रार्थना झलकदी है, जिहदे च प्रेम झलकदा है, जिसदे च समदृष्टि झलकदी है, जिसदे च दया डुल डुल के पैंदी है, उसे दृष्टि नूं आखिया गया अमृतमयी दृष्टि, अमृत दृष्टि। नहीं ते दृष्टि भी जहरीली होंदी है। जिवें कईयां दे बोल जहरीले होंदे ने, कईयां दी तकनी भी बड़ी जहरीली होंदी है। कईयां दे बोल जख्मी कर जांदे ने, कईयां दी तकनी भी आघात पहुंचांदी है, चोट पहुंचांदी है, गिरा के रख देंदी है। तकनी विच जहर भी है, तकनी विच अमृत भी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लियो अंगुरिया, सरवन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगोरिया। मेरे कुल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज, संसार दी आवाज, किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने, बह रहे ने, हर एक दे कन बह रहे ने, आवाजां सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं है, समुचे परिवार दी आवाज सुन सकदे ने, संसार दी आवाज सुन सकदे ने, निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं और। हे परिपूर्ण परमात्मा, जितनी भी आवाजां मेरे कन्ना च पै रहियां, पंछियां दियां, पशुआं दियां, मनुखां दियां, बदलां दी गर्जन, पवन दी शांशां, मैनूं ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहा है। सब तेरी आवाज, सब तेरा नाद, सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने, मेरे कोलो कन भी नहीं, मेरे कोलो जबान भी नहीं, मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे, उसदे घर विच ही सिक्का चलदा है, ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलता। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने, बाहर दे नहीं, इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसदे बोल सारे महल्ले, सारे कलोनी चल जांदे ने, मन लैंदी है समुची वसनीक, उसके बचना नू, उसके बोला नू मन लेंदी है, सुन दी है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे भी पहुंचते हैं, उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखां करोड़ां च इक्कद खुशकिस्मत इंसान जिसके बोल निरंकार तक पहुंचते हैं और सुनदा है निरंकार, उसके बोल परमात्मा नू भी सुनने पैंदे ने, उसके बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, वो जबान मैं कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके, वो कन मैं कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके, वो नेत्र मैं कित्थों लियावां जो तेनूं वेख सकन, और हत्थां दी वो मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल तो पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रिया करके है, कर्म इंद्रिया करके है। अगर एक कर्म इंद्रेस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रेस दे कोलों खो लईए, फिर पत्थर ते मनुख दे कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा, पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा, क्योंकि उहदे कोल हथ पैर नहीं है। पत्थर नहीं बोल सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर स्पर्श नहीं कर सकता, पत्थर सोच नहीं सकता। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा, गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर, जिवें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं, पत्थर दे च कोई गति नहीं, पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं, पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी, वो जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वास देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतिया ने बर्दाश्त किया, चलो खैर सुन दे पाया, चलो मुंह साड़ी तरफ नहीं करदा ते ना सही, बोल साडे तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतिया ने बेनती की थी, फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो? जद सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो, जद सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो, पिठ साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता एक कोई गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो? ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा, जिसनू मनिया ही नहीं तो की सुनिया? इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है। जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह, कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पिया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चल भी नहीं सकदा, कुछ पकड़ भी नहीं सकदा, बोल भी नहीं सकदा, कोई भी बोध नहीं इसनों। इते गोद इच इंज पे है जिमे एक पत्थर, लेकिन पत्थर दे च ए उम्मीद नहीं कीती जा सकदी कि कदी ये चलेगा, कदी ये दामन पकड़ेगा, कदी लदी बले बोलेगा। बच्चे ने विश्वासे गोद इच रखे और ममता नाल रखे है, आसा जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी है, आज नहीं ते कल चलेगा, चलो आज नहीं ते कल बोलेगा, आज नहीं ते कल सुनेगा, आज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी। सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने, गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है, चलो कोई गल नहीं, अज चलना नहीं आया कल चल लेणगे, अज वेखना नहीं आया कल वेख लेणगे, अज सुनना नहीं आया कल सुन लेणगे। अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने, और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने। इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास। अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने, देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए, देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। हे प्रभु तेनू देख सका मेरे को अखा नहीं ने, कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने, और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है। तीसरी पंक्ति च बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब, मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है। ए गुरु जो तेरी सोचनी है, जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है, जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े, रिश्ता किवें जुड़े? एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल दा बुढ़ा सहमत हो गया है, इसनू बुढ़ा आखण दी लोड़ नहीं, भी बच्चा है। पर एक 4 साल दा बच्चा, 81 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है, इसनू 4 साल दा बच्चा आखण दी लोड़ नहीं, ये बुजुर्ग है। उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो उच्चा है, छोटे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो छोटा है। धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया, नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनियो, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थैओ। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती, अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती, ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी, इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई। एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे इस मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकदा है, दादे पोते दा संबंध हो सकदा है, मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। दोस्ती ते समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है, विचारां दी सांझ, तो क्या 80 साल का बुढ़ा ये 4-5 साल के बच्चे दे विचारां नाल सहमत होगा? अगर हो गया तो इसे बुजुर्ग कहने की लोड़ भी नहीं, ये बच्चा है। क्या ये बच्चा 70-80 साल के इस बुजुर्ग के विचारां नाल सोचनी नाल तरजे जिंदगी नाल सहमत होगा? कथा ही नहीं। अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं, ये बुजुर्ग है। दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, तो इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड है? और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहते हैं, मन में गुरमत, गुरमत में न मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने। तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है। तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है। मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है, मैं नेड़े किस तरह आवा? मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले बुलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कोल हाथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखा ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी है जो चलना आया, जिसने आज ही चलना सीखा तो कितना के चलेगा? एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने सतगुरु, तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गहे लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहंदे ने इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बां पकड़ लेंदा है परमात्मा, बां पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने अवगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नु कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नु ओमंदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता, गुनाह कीता, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होता है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर का अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देता है, गुनाह नहीं दिखाई देता, किरत दिखाई देती है, पाप नहीं कहीं देने जाता, जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह तंदा दिखाई दे रहे ने, तो ये मनुख हुण गुनाह नु किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, एक पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उनु प्रभु दी शक्ति किथे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनु परमात्मा दा पुन प्रताप किथे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदे आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा तो डॉक्टर पुछदा कुछ दिखाई देता? कहंदा हां अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा। डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदे है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी, उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहने ने धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कहने लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, फिर कोई और करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तेनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुर ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Baad and Sardarni Surinder Kaur Baad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-6790.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Goodale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Goodale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GoodaleBaudGroup.com.

0: मेरे
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है। So the Musa baby, yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

पूरी उसे एक भाग दे जागृति दे नाल जप करिए, इतनी समर्था फिर मिल जाती है, बाकी नौ हिस्से जाग पेंदे। जागया होया मन भगवान हो जाता है, सुत्ता होया मन शैतान हो जाता है। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण एक दो नुक्ते होर भी मैं थोड़े सामने बयान करा। एकाग्रता बनन लग पई है, रस आण लग पै। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै तो समझना मन अरोग होंदा जा रहा है, जागदा जा रहा है। सोना ही रोग है, जागना ही तंदुरुस्ती है। अगर वाहिगुरु आखण दा रस आण लग पै, कीर्तन सुनन दे स्वाद आण लग पै, बाणी जपण दे रस आण लग पै, गुरुद्वारे आण नू उत्साह पैदा होंदा, उमंग पैदा होंदी है, तो समझना मन जागदा जा रहा है, तंदुरुस्त होंदा जा रहा है, रोग मिटदे जा रहे हैं। अगों फिर एक खतरा है, अनंत जन्मां तक जो असी जीवे हैं वो उन्हां संस्कारां दे जीवे हैं जो संस्कार काम तो बने ने, लोभ तो बने ने, अहंकार तो बने ने, क्रोध तो बने ने, मोह तो बने। अनंत जन्मां तो इन्हां ही संस्कारां दे जी रहे हैं, जी रहे हैं, लोभ आश्रित जी रहे हैं, काम आश्रित जी रहे हैं, अहंकार आश्रित, इसे दे संस्कार ने। जैसे मन जुड़दा है नाम दे, कदों जुड़दा है जब भुख पैदा होती है, इस सारे संस्कार मिटदे ने, तो सारा संसार खत्म होता है। वही संसार साडा है, उसे अज तक जीवे होंदे हैं। मनुख नूं पहली दफा अनुभव होंदा है जिवें मैं मर रहा हूं, खत्म हो रहे। स्याही भी छांदी है, एक नहीं मैनू सैकड़े अभ्यासियां ने कहा असी ते डर दे मारे छोड़ दिता है, नहीं कीता। कई चीख भी उठे ने, यह की होने लगे ते खत्म होने लग गया, पर कीता की जाए मन खत्म होने लगा है। अज तक हजारां तरह दे जो अंदर संस्कार पए ने जिन्हां दे च असी जी रहे सी वह खत्म हो रहे। एक नवी जिंदगी का जन्म आता है, पुरानी जिंदगी मिटती है। इनू कहने द्विज, दूजा जन्म। एक जन्म मां बाप तो होया साडा, पर एक जन्म जप तो होंदा है, शब्द तो होंदा है, गुरु तो होंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, बड़ी कीमती बनती है। मां बाप दे घर जन्म लिया सी, जन्म मरण चलदा ही रहा है, चलदा ही रहा है। गुरु दे घर जन्म हो गया, जमना मरना मिट गया। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, ये आवागमन मिट गया, ये जमना मरना मिट गया। क्यों? हुण गुरु दे घर जन्म हो गया। मां बाप दे घर जन्म होंदा है पुत दा, सुत दा। गुरु दे घर जन्म होंदा है संत दा, भगत दा। और मैं अर्ज करा, संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जांदा। संत मोए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदियां जी इस तन तो उच्चा उठ जांदा है, इसनों कहंदे ने जीवत मृतक, मुर्दे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया, अंजन माए निरंजन रहिए, बौल ना बौजल दाया। स्वास्थ्य चल दे पैने जीवदा पे, जीवत मरे मन दे तल ते मर गया। आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत, लोभ आशत, काम आशत, जो बने संस्कार सन जिन्हां दे च जी रहे सी, खत्म। जद खत्म होण लगदी है, भय उसे तरह ही पैदा होंदा जिवें शरीर खत्म हो रहा है, डर उतना ही लगदा जिवें शरीर खत्म हो रहा है। कई इथों वापस मुड़दे ने, एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासियां ने कह दिता मैनू कि ज्ञानी जी ये की हो रहा है, असी तो छोड़ बैठे हैं, तो खत्म होने लगे सी। मैं ठीक है, खत्म होने लगे सी। अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे हैं वो खत्म होने लगे।